0: जाना है और खुद को, पहले खुद को बदलना है, खुद को एक एग्जाम्पल सेट करना है समाज के सामने। तो आप किसी भी सिचुएशन में, आप कहीं भी हो, आप पर्यावरण संरक्षण के लिए छोटे छोटे कार्य भी करते हैं तो वो बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं बाहर हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में, मैं अपने पीजी में हूँ, बट स्टिल मैं इको ब्रिक्स यहाँ पे भी मैं बनाती हूँ। तो लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप कहीं भी हो, पर्यावरण संरक्षण के लिए छोटे छोटे कार्य करिए। आप जैसे इको ब्रिक्स मैं बनाती हूँ, आप इको ब्रिक्स बना सकते हैं। और फिर लाइक बहुत सारी चीजें हम जैसे हमें प्लांट्स पे ज्यादा डिपेंड रहना चाहिए। मेरा ऐसा पर्सनली मानना, प्लांट्स पे डिपेंड रहिए। आप अपना थैला खुद लेके जाइए बाहर। ऐसे बहुत सारी चीजें लाइक लाइट ऑफ लाइट ऑन, ये हमको बचपन से सिखाया जाता है। तो ये सब कुछ चीजें हैं, आप यहाँ से शुरुआत करिए और फिर आगे तो फिर बढ़ेगा ही। तो मेरा सबसे यही है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए और घर से अपने शुरुआत कीजिए। एक पेड़ लगाइए अपने घर पे और उसके अच्छे से केयर कीजिए, तो आप उससे कनेक्ट होंगे। तो जब आप नेचर से कनेक्ट होंगे तो आप खुद आइडियाज निकालेंगे कि और ऐसा क्या कर सकते हैं हम मदर नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो पर्यावरण को हार्म कर रही होती है पर हमें उनके बारे में ज्यादा पता नहीं होता है। तो हमें उन चीजों के बारे में रिसर्च करना है, हमें पढ़ना और सजग रहना है, और सभी चीजों के प्रति हमें संवेदनशील रहना है। हमें पेड़ में हमें जान महसूस करनी है, हमें संवेदनशील इतना होना है कि हम सब चीज में जान महसूस करें। तो ऐसा छोटे छोटे ऐसी चीजें हमें करते रहनी चाहिए।
1: शुक्रिया नंदिनी जी। आपके अनुसार पर्यावरण से रिलेटेड शिक्षा, पर्यावरण से की जो जागरूकता है हमारे अंदर, वो कैसे और अच्छे तरीके से छोटे बच्चों में और युवाओं में जनरेट करी जा सकती है?
0: आई थिंक ये चीजें प्रैक्टिकल के थ्रू ज्यादा की जा सकती है। हमें ये नहीं सोचना है कि मैं पेड़ लगाऊंगा, हमें ये कि मैं पेड़ लगा चुका हूँ और उसकी मैं केयर कर रहा हूँ। हमें इस जगह शिफ्ट करना है। हमें बच्चों से प्रैक्टिकल कराना है कि बच्चों से एक पौधा लगवाइए, उनको बोलिए आप इस पौधे की केयर कीजिए। क्योंकि लाइक पौधा ऐसा चीज है, प्लांट एंड ट्रीज आर द थिंग्स लाइक, वो बहुत ही वैल्यूएबल है। हमें मतलब उनको अच्छे से, बच्चों को ये चीज सिखानी है, तो हमें प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि उसी से आई थिंक ज्यादा लोगों के अंदर और जागरूकता आएगी। आप जैसे बच्चे जा रहे हैं फैन ऑन करके चले गए, तो आप उनको सिखाइए नहीं आप फैन बंद कीजिए, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी। ये सब चीजें रहती है, छोटी छोटी चीजें जो हमें किड्स को स्पेशली सिखानी चाहिए। और बचपन से जैसे हम इन्हें प्रैक्टिकल कराएंगे इस चीजों का, तो आई थिंक उनके अंदर ज्यादा इस चीजों की वैल्यू आएगी। और जब बड़े होंगे वो और पढ़ेंगे इस बारे में आगे क्लासेस में, तो वो चीजें जब बचपन से भी वो कर रहे होंगे तो उनको एक्चुअल मीनिंग तब पता चलेगा कि ओके, हमारे पेरेंट्स हमें छोटे से क्यों बोलते थे कि वी शुड सेव इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हेन दे विल रीड अबाउट इट, तो तब वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। इसलिए हमें बचपन से ही बच्चों को नेचर से कनेक्ट करके रखना चाहिए। लाइक माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज कनेक्टेड मी विद नेचर। वो हमेशा से मुझे बचपन से मुझे सिखाते थे कि नहीं बेटा पानी बचाइए, आप नल बंद कीजिए, हमेशा आप घर से निकल रहे हैं बाहर के लाइट ऑल एवरीथिंग ऑफ करके चलिए, प्लांट है बेटा। वो मुझसे पानी बचपन में डलवाते थे कि नहीं आप प्लांट्स पे पानी डालिए, आप कनेक्ट कीजिए नेचर से। आई थिंक चिल्ड्रंस को प्रैक्टिकल के थ्रू नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, और चिल्ड्रंस को ही नहीं, सबको प्रैक्टिकल करके नेचर से कनेक्ट होना चाहिए।
1: बहुत ही कीमती जानकारी और बहुत ही अच्छी बात बताई है आपने हम सबके लिए। इसके अलावा जो मेरा एक और सवाल है आपसे, वो ये है कि जो स्कूल्स और जो कॉलेजेस हैं, इनका क्या कर्तव्य होना चाहिए पर्यावरण की जागरूकता फैलाने में और इसमें युवाओं को मोटिवेट करने में?
0: जी देखिए, स्कूल एंड कॉलेजेस तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि पूरे यूथ और स्टूडेंट्स एंड टीचर्स सब एक साथ होते हैं। तो प्रोबेबली वो ऐसी प्लेस है कि जैसे अगर टीचर आपको जो बताता है स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स उसको ग्रैप करते हैं और ज्यादा से ज्यादा वो सीखते हैं। तो यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स का तो बहुत ही मेजर रोल है। उनको भी लाइक टाइम टू टाइम बच्चों को उनके प्रैक्टिकल्स कराना चाहिए। स्कूल कैंपसेस बड़े होते हैं, वहां पे प्लांट्स लगा के उनको बोलना चाहिए कि आप अपने पौधे का केयर कीजिए, क्योंकि बच्चा डेली स्कूल आता है। अब वो अपना एक प्लांट लगाएगा, वो उसको डेली वाटर कर सकता है, तो वो डेली का एक प्रैक्टिकल, वो तो बहुत ही अच्छा प्लेस है जहाँ बच्चे और अच्छे से सीख सकते हैं। एंड लाइक वो तो इतना कॉम्पिटिशन कराए ताकि लोग और पर्यावरण के बारे में जाने, जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन हम करा सकते हैं स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी।

0: मैं एक बात और कहने वाले हैंगे कि पर्यावरण के लाने तुमने भी बहुत अच्छा काम करो, तो हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देवो चाहते हैंगे। और अपने कुछ अनुभव पर्यावरण से जुड़े जरूर साझा करो, कैसे हम वो और आप सफल कहानी के माध्यम से तो जानते ही हैंगे। वर्षा के बारे में सब लोग ने जानत हैंगे के वर्षा रेडियो बुंदेलखंड में काम करत हैंगी, लेकिन पर्यावरण के लाने विशेष तौर पर अब एक महीना में इन्हों पुरस्कृत करोगा हो तो, और विशेष तौर पर इन्हों बुलाओगा हो तो कि आप बुंदेलखंड के क्षेत्र में आपने जो 100 गांव में मिलके पर्यावरण के लाने जो मुहिम छेड़ी हैगी और पर्यावरण के लाने तरह तरह के कार्यक्रम बनाए हैं, खासतौर पर रेडियो से बनाए जो कार्यक्रम और नैरोकास्टिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करो, तो कछु अपने श्रोता साथियों को पर्यावरण बचावे के लाने कछु संदेश, पर्यावरण संरक्षित के लाने को संदेश आप भी दो।
1: सबसे पहले तो मनीष भैया हम आपको बता देवे कि जो काम की जन तारीफ आप पुल बांधवे जा रहे हैंगे वो काम को बरसा ने अकेले नहीं करो है गो, हमारी पूरी टीम जैसे कि मनीष भैया हैंगे, माता दीन भैया हैंगे, अपने जगरूप भैया भी हते, उनने भी प्राची रामपाल अबे तक के जितने भी रेडियो के साथी काम करत हते सबने मिलके काम करो है गो। सो ये तारीफ के हकदार अपनो पूरो रेडियो बुंदेलखंड को स्टाफ है गो। सो अनुभव के लाने अगर मनीष भैया आपने बात छेड़ी हैगी तो आपको बता देवे कि शुभकल कार्यक्रम अपन और 2013 से लगातार अपने साथियों के बीच में चला रहेंगे और समय के अनुसार जो समय की मांग होते ही उन सब चीजन को अपने साथियों के बीच में अपन प्रसारण कर देंगे। जैसे अगर हमारे कोनू किसान साथी पूछत हैंगे अपन से कि अगर पर्यावरण को सही रखने है को तो उके लाने अपन और है कौन सी बीजन को चयन करवे, कौन सी खाद को उपयोग करवे, तो बस इन्हीं के बारे में अपन और ने जागरूकता बढ़ाई हैगी। काम करवे की तो अपन बात नहीं कह सकत लेकिन अपन ने जागरूकता बढ़ाई हैगी इन गांवन में, सो जी की वजह से लोग समझ गए हैंगे और अब खुद से काम करवो उनने शुरू कर दो है गो। तो सफलता जो मिली हैगी वह रेडियो बुंदेलखंड को मिली हैगी।
0: बिल्कुल, और संगे संगे आप भी उसके पात्र हकदार होगी। कैसे यूएन क्लाइमेट चेंज यंग लीडर में आपको सिलेक्शन भी बहुत हो, और आपको बता दें वो चाहे जाके बाद सिलसिला रुको नहीं है और एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल करके आज हम और आप देख रहे हैं कि पूरे पेपरों में क्लाइमेट चेंज को लेकर अपनी बुंदेलखंड क्षेत्र से श्री वर्षा का चयन किया गया था। और बड़े गौरवान्वित की बात है कि इस तरीके की कुछ उपलब्धियां रेडियो बुंदेलखंड को प्राप्त भई हैंगी, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करत हैंगे आप लोगों को स्नेह जो मिले हुए गो। और खास तौर पर रेडियो बुंदेलखंड की इतनी चर्चा खास तौर पर पूरी देश में सुनाई जा रही हैगी कि रेडियो बुंदेलखंड द्वारा कितनों अच्छा काम करो जा रहा है गो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर साथियों आपको वर्षा की पूरी कहानी आपको सुनने हैगी तो आप फोन कर सकत हैंगे, और अगर सबसे ज्यादा जन के मतलब फोन आ गए हैंगे कि वर्षा की पूरी कहानी अभी तक को सफर आपको सुनने हैं तो कॉल कर सकते हैं, नंबर वही है घुमाओ 92-19-20-77-49।
1: बहुत बढ़िया मनीष भज्जा, आपने तो ऐने ही नोनी बात बता दी हैगी और वर्षा की कहानी इतने अपन सफल कहानी सुन रहे थे और सफल कहानी में अपन ने आज वर्षा की कहानी पे ज्यादा फोकस कर लो है गो। सो इन सब चीजन पे आपको ध्यान नहीं देने हैं, बस केवल मनीष भैया को उद्देश्य जो है तो वो जो है तो के रेडियो बुंदेलखंड को एक सफलता आज मिल गई हैगी, बड़ो अच्छो लग रहा है और इन सबको श्रेय जो है वो अपनी टीम को तो जाता ही है लेकिन संग में अपने श्रोता साथियों को भी जाते हैं, क्योंकि जो भी चीजें अपन इतने से ब्रॉडकास्ट करे थेंगे अगर अपने साथी भैया सुन के उम्र बदलाव नहीं करेंगे तो अपन और सफल नहीं हो पाएंगे। तो हम साथियों से भी यही अपेक्षा कर थेंगे कि भैया आगे भी आपको साथ हमारे संगे ऐसे ही बनो रहे ताकि रेडियो बुंदेलखंड हमेशा ऊंचाइयों तक पहुंचत रहे। और देखो आप ज्यादा बतकाव नहीं करने है गो, काहे कि अपनो समय कार्यक्रम को इतनी समाप्त हुए जा रहा है गो। सो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
0: और मनीष को देव जावे की इजाजत,
1: फिर उज्जे आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लाने नमस्कार।
2: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।

0: शुभ कल बदलती जलवायु के लिए तैयार हूं।
1: सास बहू की साजिश
2: या ससुर जी का दुलार,
1: ननद जी से हो नोकझोंक
2: या देवर का प्यार, इन सभी बातों को समेट कर लाया
1: आपका अपना कार्यक्रम बातें छोटे पर्दे।
3: नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों आज के कार्यक्रम बातें छोटे पर्दे की में। जी हाँ साथियों, कार्यक्रम बातें छोटे पर्दे की में महारानी लक्ष्मीबाई की कहानी आपको सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके जीवन से जुड़ी हुई हर एक कहानी को हम सुनाते हैं आप।

0: आपके बीच में और हमारा साथ देते हैं मनीष जी। तो मनीष जी, आज हम अपने कार्यक्रम के तीसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि पिछले एपिसोड में हमने प्रवेश कर लिया था और आगे तीसरे अध्याय में क्या होता है इस पर हम और आप बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं
1: जी। बिल्कुल, और सभी साथियों को बता देना चाहते हैं कि जो रानी लक्ष्मीबाई की हम जो एपिसोड बाई एपिसोड आपको कहानी सुना रहे हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको और हमको पता नहीं रहता है, और साथ साथ में हम उन छोटी छोटी बातों पर भी एक प्रकाश डाल रहे हैं जो उनसे जुड़ी बातचीत हो। तो अभी तक हमने इस पूरे कार्यक्रम में जाना कि रानी लक्ष्मीबाई का विवाह होने के बाद जब महाराज जी का देहांत हो जाता है, तो अब उनके हाथ में जो कमान रहती है और झांसी की बागडोर रहती है, उस पर किस तरीके से खरी उतरती है, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था और उस समय अंग्रेजों के शासन के साथ साथ ऐसी परिस्थितियां बन चुकी थी झांसी में कि वहां पर शासन चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और ऐसे में रानी लक्ष्मीबाई ने धैर्य का परिचय देते हुए और उस झांसी पर अपनी परचम लहराया और साथ साथ में ग्वालियर पर भी उन्होंने अपना कब्जा किया, और ग्वालियर के लड़ाई के बाद उनका देहांत हो गया था। और साथियों, इसमें अभी तक आपने इन छोटी छोटी बातों को जाना कि किस तरीके से महाराजा जी का देहांत हो गया था। अब हम जानते हैं कि उनके बाद अब क्या होता है। तो सन 1752 ईस्वी में बारन हैंसिंगटन जने इस देश के राजाओं और प्रजा पर जो अत्याचार किया था, इंग्लैंड की पार्लियामेंट सभा में विचार करते समय यह निश्चित किया गया था कि हिंदुस्तान में अपने राज्य का विस्तार करने या वहां का देश अपने अधिकार में लेने का प्रयत्न करना ब्रिटिश राजनीति और उसकी प्रतिष्ठा और इच्छा से विरुद्ध है। कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर ने लिखा है कि हमारे नूतन प्राप्त राज्य की मर्यादा इतनी विस्तृत है कि जब हम अपनी वर्तमान स्थिति का विचार करते हैं, तब आयन बनाने वालों की इस उस गंभीर सूचना की बुद्धिमत्ता और आवश्यकता हमारे मन पर अंकित हुए बिना नहीं रहती है, जिससे यह निश्चित किया गया था कि हिंदुस्तान में राज्य प्राप्ति या राज्य विस्तार का काम करना ब्रिटिश राजनीति इज्जत और इच्छा के विरुद्ध है, परंतु यह निश्चित 6 वर्ष से अधिक समय तक न ठहरने पाए। सन 1790 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान पर चढ़ाई की और इसका आधा राज्य हस्तगत कर दिया था। फिर 6 वर्ष के बाद सन 1799 ईस्वी में लॉर्ड बेलस्ने ने टीपू सुल्तान का सारा राज्य ही अपने अधीन कर लिया।
0: थोड़े ही दिनों के बाद कर्नाटक प्रांत और अवध के नवाब से लिया हुआ प्रांत अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया गया। इसके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बहुत संतोष हुआ, परंतु अल्प समय में ही उनके राज्य की मर्यादा बहुत बढ़ जाने के कारण उन्होंने घबराकर पुनः निश्चय किया कि अब हिंदुस्तान में राज्य प्राप्ति का कोई प्रयत्न न किया जाए। अल्प ऑफ मोइरा के गवर्नर जनरल होते ही नेपाल युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसमें बहुत बड़ा प्रांत ब्रिटिश सरकार के अधिकार में आ गया। तत्पर यह कि ब्रह्मदेश, आसाम, कुर्क, सिंध, पंजाब आदि बड़े बड़े प्रदेश क्रमश अंग्रेजी अमलदारी में शामिल हो गए। जब लॉर्ड डलहौजी सन 1847 ईस्वी में यहां आए, तब उन्होंने यह निश्चित किया कि जो देसी रियासतें लावारिस होती जाएं, वे ब्रिटिश राज्य में शामिल कर ली जाया करें, और जिन रियासतों को दत्तक लेने के लिए सरकारी मंजूरी लेनी पड़ती है, उनको लावारिस समझकर ब्रिटिश राज्य में शामिल कर लेना चाहिए। इस विषय में उनका जो मत था, वह उन्होंने स्वयं इस प्रकार प्रकट किया।
1: मैं किसी के लिए यह संभव नहीं समझता कि वह इस राजनीति पर कोई आपत्ति कर सके कि जो प्रदेश पहले ही से अपने कब्जे में है, उसके बीच में यदि कोई ऐसी छोटी छोटी रियासतें हों जो लावारिस हो गई हों, उन्हें अपने कब्जों में लेकर उचित अवसर आ पड़ने पर अपने मुल्क का विस्तार बढ़ाया जाए। उसकी उन्नति की जाए। इन छोटी छोटी रियासतों में हम लोगों को सिर्फ तकलीफ ही मिल सकती है। मेरी समझ में ये हमारे राज्य की मजबूती का कारण हो नहीं सकता। अतएव उनको अपने राज्य में मिला लेने से इनसे होने वाली तकलीफें दूर हो जाएंगी और हमारे खजाने की बढ़ती भी हो सकेगी। ऐसा करने से उन रियासतों को हमारी राज्य प्रणाली का लाभ अवश्य होगा। मैं यह कह सकता हूं कि इसी में उन रियासतों की हर तरह की भलाई है। यह मेरी पक्की और विचार पूर्वक निश्चित राय है कि अपनी उचित और बुद्धिमत्तापूर्ण राजनीति से काम लेने से अंग्रेजी गवर्नमेंट का आवश्यकता कर्तव्य है कि मुल्क लेने में या आमदनी बढ़ाने के ऐसे उचित मौकों को आप समय समय पर हाथ आवे कभी ना छोड़ना चाहिए। ऐसे मौके चाहे इस समय पैदा हो कि रियासत किसी भी किस किस्म का हो, कोई वारिस ना हो, चाहे इस तरह की असली वारिस ना होने से अंग्रेज सरकार के इजाजत देने पर हिंदू शास्त्र के अनुसार गोद लेकर कोई वारिस बनाया जा सकता है। उन दिनों मौकों को हाथ से निकल जाने देने की भूल कदापि ना करना चाहिए।
0: जिस समय बुंदेलखंड के पॉलिटिकल एजेंट मालकम साहब की रिपोर्ट भारत सरकार के पास पहुंची, उसी समय गवर्नर जनरल साहब अवध प्रांत में दौरे पर गए हुए थे। जब 4-5 महीने बीत गए और सरकार की ओर से कुछ जवाब नहीं आया, तब महारानी लक्ष्मीबाई ने एक खलीता मेजर एलिस साहब द्वारा भारत सरकार को भेजा। उसका सारांश यह था, इस प्रांत में ब्रिटिश सरकार का राज्य स्थापित होने से पहले हमारे ससुर शिवराज भाऊ ने सरकारी जो सहायता की थी वह झांसी के दफ्तर से प्रकट होती है। इस सहायता के बदले ब्रिटिश सरकार ने हमारे घराने पर जो कृपा दृष्टि की थी उससे हमारा सदा कल्याण हुआ है। सन 1842 ईस्वी में हमारे पति महाराज गंगाधर राव के साथ कर्नल सलीमन साहब ने जो संधि की थी उससे सन 1817 ईस्वी में रामचंद्र राव के साथ की हुई संधि की शर्तें रद्द नहीं की गईं, किंतु यह वचन दिया गया था कि वे सब शर्तें पूर्वता पाली जाएंगी और होने वाले सब फायदे झांसी राज्य को प्राप्त होंगे। शिवराव भाऊ के सौजन्य पूर्णता बर्ताव और ब्रिटिश सरकार के संबंध में उनके हृदय के अटल प्रेम की और ध्यान देकर उन्होंने अपनी मृत्यु के समय जो इच्छा प्रकट की थी कि झांसी का राज्य रामचंद्र राव को वंश पर परंपरा के लिए दिया जाए, उसे स्वीकार करने उक्त संधि की गई है। झांसी सरकार का प्रेम भाव और विश्वास दृढ़ करने के हेतु उक्त संधि से यह निश्चित हो चुका है कि रामचंद्र राव उनके वारिस और गद्दी सनी शिवराज भाऊ के राज के वंश परंपरा के स्वामी हैं। इसका अर्थ यही है कि स्वामी में मोक्ष प्रति के हेतु अपने पश्चात उत्तर क्रिया करने के लिए जो दत्तक पुत्र लिया जाएगा उसको ब्रिटिश सरकार मंजूर करे और उसके द्वारा घराने का नाम कायम रखे।
1: हिंदू शास्त्र के अनुसार मृत पिता को पिंड दान करने और उसकी श्राद्धी क्रिया करने का अधिकार औरस पुत्र के समान दत्तक पुत्र को ही है। इसलिए दत्तक लेने की रीति सारे भारतवर्ष में प्रचलित है। इसी तरीके से इसी रीति के अनुसार हमारे मृत पति ने 16 नवंबर को दीवान नरसिंह राव आपा लाला लाहोरीम तट्टी चंद्र अनेक सज्जनों के सम्मुख मुझे बुलाकर यह कहा गया कि मेरा स्वास्थ्य बहुत बिगड़ा हुआ है और अब औषधियों से कुछ लाभ नहीं होता, अतएव गद्दी का वारिस होने के लिए अपने गोत्र के किसी योग्य बालक को हिंदू शास्त्र के अनुसार गोद लेने का मेरा विचार है।
0: तब उन्होंने रामचंद्र बाबा को बुलवाकर अपने गोत्र के अनेक बालकों में से वासुदेव राव के पुत्र आनंद राव नामक के

0: 5 वर्ष बालक को पसंद किया। अतः विद्वान पंडितों और शास्त्रियों को बुलवाकर दत्तक विधान किया गया। दूसरे दिन सवेरे पंडित विनायक राव ने संकल्प पढ़ा और आनंद राव के पिता वासुदेव राव बने। यथाविधि पुनः दान किया गया। इस पुत्र का नाम दामोदर राव गंगाधर राव रखा गया और दत्तक विधि समाप्त की गई। महाराज की आज्ञा अनुसार मेजर एलिस और कप्तान मार्टिन साहब को दत्तक विधि के समय राजमहल में पधारने के लिए निमंत्रण पत्र भेजा गया। उसके अनुसार वे दोनों 20 तारीख को 10 बजे राजमहल में आए थे। उस समय हमारे पति ने सरकार की इजाजत हासिल करने के लिए उनको एक खलीता दिया, जो वही पर पढ़कर उन्हें सुनाया गया था। मेजर एलिस साहब ने यह वचन दिया था कि महाराज की इच्छा अनुसार हम सरकार को सब हाल सूचित कर देंगे। दूसरे दिन अर्थात सोमवार तारीख 21 नवंबर को हमारे पति का देहांत हुआ। उनका सारा क्रियाक्रम दामोदर राव गंगाधर राव ही ने किया। इस बालक को हमारे पति ने ब्रिटिश सरकार की कृपा के अधीन किया है। अब उसकी रक्षा और पालन का भार उन्हीं पर है। सरकार से हमारी अंतिम प्रार्थना यह है कि जिस प्रकार दतिया के राजा परीक्षित जालौन के बालाराम और ओरछा के तेज सिंह के लिए हुए दत्तक को सरकार ने मंजूर किया, उसी प्रकार इस दत्तक के लिए भी सरकार अपनी मंजूरी दे। झांसी के संधि पत्र में हमेशा शब्द का उपयोग किया गया है। यह शब्द उक्त राजाओं के संधि पत्रों में संयुक्त नहीं हुआ है। अतः उन राजाओं की अपेक्षा दत्तक लेने का हमारा हक अधिक है। यही खलीता गवर्नर जनरल साहब की सेवा में भेजा गया। महारानी लक्ष्मीबाई की प्रार्थना स्वीकार करने के लिए झांसी के पॉलिटिकल एजेंट मेजर एलिस साहब ने तारीख 24 दिसंबर सन 1853 ईस्वी को एक पत्र में यह लिखा था कि जिस तरह ओरछा से राज्य के साथ हमने संधि की है, उसी तरह झांसी के राज्य के साथ भी की है। दोनों संधियों का आशय एक सा है। ऐसी अवस्था में एक राज्य को दत्तक की मंजूरी देना और दूसरे राज्य को ना देना उचित नहीं है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने अपने तारीख 27 मार्च सन 1836 ईस्वी के पत्र में यह स्वीकार किया है कि देसी राजाओं को दत्तक लेने का पूरा हक है। अब यदि यह बहाना किया जाए कि जिन घरानों को ब्रिटिश सरकार ने पूर्व सहायता के बदले राजपद पर चढ़ाया है, वे अन्य घरानों के समान प्राचीन नहीं हैं, और यदि इसी बहाने से उनका कबूल ना किया जाए तो मेरी राय में यह बात डायरेक्टर की आज्ञा के विरुद्ध और उनकी उदारता का नाश करने के समान है। परंतु यह पत्र बुंदेलखंड के एजेंट दफ्तर में ही बहुत दिनों तक पड़ा रहा। झांसी की गद्दी खाली देखकर गंगाधर राव के प्राचीन निवास स्थान खानदेश के रहने वाले भाई बंधुओं में से सदा शिव राव नारायण नाम के किसी एक मनुष्य ने झांसी का राज पाने के लिए मेजर मालकन साहब को एक प्रार्थना पत्र भेजा। इस प्रार्थना पत्र को गवर्नर जनरल की सेवा में भेजते समय तारीख 31 दिसंबर 1853 ईस्वी को मालकम साहब ने अपनी सिफारिशी चिट्ठी में यह लिखा है
1: कि यदि मृत राजा के पुरखों के किसी वारिस का हक कबूल करना होता है, यह मनुष्य सबसे ज्यादा नजदीकी का रिश्तेदार है जो गद्दी पाने का हकदार हो सकता है। जब सन 1854 ईस्वी के फरवरी महीने में लॉर्ड डलहौजी साहब दौरे से कलकत्ते को लौट आए, तब झांसी राज्य का विचार आरंभ हुआ। भारत सरकार ने पर राज्य समधि सचिव मिस्टर जेपी ग्रंट साहब ने झांसी राज्य की एक बहुत ही बड़ी मिसाल तैयार की। उसमें झांसी राज्य की प्राचीनता और उसके साथ ब्रिटिश सरकार के संबंध का संक्षिप्त इतिहास देकर इसी बात पर जोर दिया गया था कि झांसी का राज अंग्रेजों राज्य में मिला दिया जाए। इस पर वाद विवाद करके लाट साहब और उनके काउंसलर लोगों ने निश्चय किया कि वह यह है कि झांसी महाराज गंगाधर राव देहांत 1853 ईस्वी नवंबर मास में के अंत में हुआ, उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने मृत्यु के दिन पहले एक लड़के को दत्तक लिया। महाराज गंगाधर राव की स्त्री महारानी लक्ष्मीबाई यह प्रार्थना करती है कि भारत सरकार उक्त दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी का वारिस कबूल करे। सेक्रेटरी ने झांसी राज्य का जो संक्षिप्त वृत्तांत लिखा है उससे यह स्पष्ट विदित होता है कि ब्रिटिश सरकार और झांसी राज्य का संबंध किस प्रकार का है। इस बात पर विचार पूर्वक ध्यान देकर और झांसी राज्य के साथ पहले से ही जो हमारा पत्र व्यवहार हुआ है उस पर ध्यान देकर मैं इस विषय पर अपनी सम्मति प्रकट करता हूं कि झांसी के राजा साहब के अधीन जो प्रांत था उसकी उचित व्यवस्था किस प्रकार की जानी चाहिए।
0: मेरी यह राय है कि इस प्रांत का अस्तित्व ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गया है। उस अस्तित्व को ब्रिटिश सरकार के हाथों में रहने देना ही हक और राजनीति की दृष्टि से उचित होगा। जिन सिद्धांतों के अनुसार झांसी राज्य की व्यवस्था की जानी चाहिए उसका पूरा पूरा विचार हाल ही में नागपुर और टिहरी के राज्यों के संबंध में वाद विवाद करते समय किया जा चुका है। बुंदेलखंड की छोटी छोटी रियासतों के विषय में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स मेटकाफ साहब ने जो नियम बतलाया है और जिसको सरकार ने सन 1837 ईस्वी में स्वीकार कर लिया है उस पर ध्यान देने से और आश्रित राज्यों के विषय में सन 1846 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने जो नियम निर्धारित किया है उस पर विचार करने से यही निश्चित होता है कि झांसी राज्य को लावारिस समझकर अंग्रेजी राज्य में मिला लेने का हमको पूर्ण अधिकार है।
1: जिस लेख में उक्त सिद्धांतों का वर्णन है उसको मैं बता देना चाहता हूं कि कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स ने यह स्पष्ट रीति से कहा है कि यदि भारतवर्ष में सब साधारण नियम और रूढ़ी के अनुसार जो रियायतें सतारा राज्य के समान स्वतंत्र नहीं है उनका स्वामित्व सार्वभौम सरकार की अनुमति के बिना किसी दत्तक वारिस को प्राप्त नहीं हो सकता। यह इस प्रकार की अनुमति देने के लिए हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से किसी प्रकार के वचन से बद्ध नहीं है और जब इस प्रकार की अनुमति दी ना जाएगी तभी ऐसा समझा जाएगा कि हमने अपने कब्जे में आए हुए प्रांत की भलाई की और उचित ध्यान दिया है। बुंदेलखंड राजाओं के विषय में सर चार्ल्स मेटकाफ साहब लिखते हैं कि प्रश्न यह है कि क्या जिनकी और संतान नहीं है वे दत्तक लेकर अन्य वारसों का हक या जब कोई वारस ना हो तो सार्वभौम सरकार को प्राप्त होने वाला हक मार सकते हैं। क्या सरकार इस प्रकार के दत्तक को स्वीकार करने के लिए बाध्य है? इस प्रश्न का निर्णय करते समय ऐसे राजाओं में जो वंश परंपरागत गद्दी के हकदार हैं और उन जागीरदारों में जिन्होंने उक्त राजाओं से या सार्वभौम सरकार की ओर से जागीर मिली है जो भेद है उस पर फ्रेजर साहब ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए मेरी यह राय है कि यदि हिंदू राजाओं की औरत संतान ना हो तो उन्हें दत्तक लेने का हक है और ऐसे दत्तक को यदि वह हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार हो तो ब्रिटिश सरकार अवश्य मंजूर करे।
0: अब जिन जागीरदारों को राज्य की ओर से जागीर मिली हो उनके उत्तराधिकारी नियत करने का अधिकार उन्हीं राजाओं को जिन्होंने जागीर प्रदान की थी या जागीर दान की शर्तों के अनुसार उन लोगों को है जिन्होंने युद्ध करके या अन्य किसी तरह से उन जागीरदारों के हक स्वयं अपने अधीन कर लिए हैं। इन शर्तों को खास मतलब यही रहता है कि और औरस

0: संतान के सिवा दत्तक पुत्र या अन्य कोई वारिस न हो। अतः ऐसे मामलों में राजाओं ने जागीर प्रदान की है, उन्हें या उनके स्थान में स्थापित होने वाले अन्य राज्य अधिकारियों को यह अधिकार है कि जब कोई जागीर ओर से पुत्र न होने से लावारिस हो जाए तब वे उसको वापस ले लें। झांसी का राज्य सतारा के समान की बहुना उससे भी अधिक आश्रित है। वह सार्वभौमित्व के नाते से ब्रिटिश सरकार के दिए हुए इनाम के तौर पर एक जागीरदार के कब्जे में था। अतः औरस पुत्र ना होने से उसको वापस लेने का अधिकार ब्रिटिश सरकार का है।
1: यह बात निर्वितवाद सिद्ध है कि झांसी का राज्य आश्रित है, वह स्वतंत्र राज्य कभी नहीं था। इतना ही नहीं किंतु टहरी का राज्य जितना स्वतंत्र माना जाता है उतना ही वह नहीं है। वस्तुतः झांसी टहरी का भी यह भाग है जिनको टहरी के प्रधान स्वामी पेशवा ने किसी एक सूबेदार को सौंप दिया था। और साथियों, अब चर्चा चूंकि बहुत हो चुकी है, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम अपने साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहते हैं। और झांसी का वृत्तांत जो है काफी बड़ा है, और ऐसे वृत्तांत को सुनने का मजा ही कुछ और है। तो साथियों, इस बात को जरूर मानिएगा कि जो हम बात बता रहे हैं वो वास्तव में पिछले जो हमने देखी भी नहीं, हमारे पुरखों ने भी नहीं देखी, वो बातें हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से साझा कर रहे हैं।
0: साथियों, इसमें मानते हैं कि कुछ गलतियां भी जरूर होंगी, तो आप उन गलतियों को नजरअंदाज कर शब्दों पे ना जाकर भावनाओं पे जाने का प्रयास करें। हमें आपसे यही उम्मीद थी। आज का ये कार्यक्रम का तीसरा अध्याय अपना चल रहा है। इस कार्यक्रम में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बातें आपको समझ में आई, हमें जरूर लिख दीजिए हमारे इस पते पर या फिर हमारे फोन नंबर पर। हमारा पता है
1: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछतगेला के पास ओरछा।
0: साथ ही हमारा मोबाइल नंबर है
1: 9219207749।
0: आज के कार्यक्रम बातें छोटे पर्दे की से जाने की दीजिए हमें इजाजत।
1: आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इबेरा अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। और दोस्तों, जैसे ही कार्यक्रम को समय भाव है सो हम लेके आ गए आपके लाने जो कार्यक्रम खेत खलियान। खेत खलियान कार्यक्रम में आज अपन बात करें टमाटर की खेती की। टमाटर की ये किस्में देंगी 1 एकड़ में 500 क्विंटल की पैदावार, जबरदस्त मुनाफा। दोस्तों, नवम्बर में तैयार करें नर्सरी और पाए भरपूर उत्पादन। जाने कौन सी हैं ये किस्में और इसकी विशेषताएं और लाभ। सो साथियों, टमाटर की उन्नत किस्में जानबे से पहले अपन सुन लेते हैं एक बढ़िया से गीत को, लेते हैं गीत को आनंद। ये गीत के बाद फिर अपन टमाटर की उन्नत किस्मन की बात करें और जाने के जी किस्में हमें कितनी पैदावार दे सकती हैं। सो आओ सुन लेते हैं बढ़िया से गीत को, लेते हैं गीत को आनंद। जी गीत को गा रहे हैं रामाधीन आर और रेखा राजी।

ऐती का धनिया डारी किते कर धनिया। देखो जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो। ये गीत को गा रहे थे रामाधीन आर और रेखा राजी। दोस्तों आलू प्याज के बाद यदि कोई सब्जी का जिक्र किया जाता है तो वह है टमाटर। टमाटर का प्रयोग एकल व अन्य सब्जियों का जायका बढ़ाने में काफी मददगार होता है। इसके अलावा त्वचा की देखभाल में भी टमाटर का उपयोग किया जाता है। टमाटर में कैरोटीन नामक वर्णक होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन पोटेशियम के अलावा कई प्रकार के खनिज तत्व मौजूद होते हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। भारत में इसकी खेती राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। आजकल तो 12 महीने बाजार में टमाटर की बिक्री होती है, इस लिहाज से टमाटर की खेती लाभ का सौदा हो रही है। यदि टमाटर की खेती के लिए उन्नत व अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का चयन किया जाए तो इससे काफी मुनाफा कमाया जा सकता है। आइए जानते हैं टमाटर की अधिक पैदावार देने वाली उन्नत किस्में और इसकी खेती से जुड़ी आवश्यक बातों के बारे में। साथियों टमाटर की देसी किस्में पूसा शीतल, पूसा 120, पूसा रूबी, पूसा गौरव, अर्का विकास, अर्का सौरभ और सोनाली प्रमुख हैं। टमाटर की हाइब्रिड किस्में पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 4, रश्मि और अविनाश 2 प्रमुख हैं। भारत में टमाटर की खेती करने वाले किसानों के बीच टमाटर की अर्का रक्षक किस्म काफी लोकप्रिय हो रही है। इसकी वजह से ये है कि एक तरफ तो इस किस्म से बम्पर पैदावार मिलती है, वहीं दूसरी ओर इसमें टमाटर में लगने वाले प्रमुख रोगों से लड़ने की क्षमता अन्य किस्मों से अधिक है। साथ ही अर्का रक्षक का फल काफी आकर्षक और बाजार की मांग के अनुसार होता है, इसलिए किसानों का रुझान इस किस्म की ओर बढ़ रहा है। क्या है अर्का रक्षक किस्म की विशेषता है? दोस्तों यह किस्म भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु की ओर से वर्ष 2010 में इजाद की गई थी। संस्थान के प्रमुख वैज्ञानिक और सब्जी फसल डिवीजन के प्रमुख एटी सदाशिव का कहना है कि यह भारत की पहली ऐसी किस्म है जो त्रिगुण रोग प्रतिरोधक होती है। इसमें पत्ती मोड़क विषाणु जीवाणु झुलसा और अगेती अंगमारी जैसे रोगों से लड़ने की क्षमता है। वहीं इसके फल का आकार गोल बड़े गहरे लाल और ठोस होता है। वहीं फलों का वजन 90 से 100 ग्राम तक होता है जो बाजार की मांग के अनुकूल है। एक एकड़ में होती है 500 क्विंटल पैदावार। डॉक्टर सदाशिव के अनुसार टमाटर की इस किस्म में अन्य किस्मों की तुलना में कम लागत आती है जबकि मुनाफा जबरदस्त होता है। इसकी फसल 150 दिन में तैयार हो जाती है। पैदावार के मामले में यह टमाटर की अन्य किस्मों की तुलना में अधिक उत्पादन देने वाली है। इससे प्रति हेक्टेयर 190 टन का उत्पादन किया जा सकता है। वहीं प्रति एकड़ 45 से 50 टन का उत्पादन होता है। प्रति क्विंटल के हिसाब से उत्पादन देखें तो एक एकड़ में टमाटर की बुआई करने पर 500 क्विंटल तक पैदावार मिल सकती है। वहीं अन्य किस्मों से काफी कम पैदावार प्राप्त होती है। टमाटर की बुआई का सही समय, दोस्तों जनवरी में टमाटर के पौधे की रोपाई के लिए किसान नवंबर माह के अंत में टमाटर की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। पौधे की रोपाई जनवरी के दूसरे सप्ताह में करना चाहिए। यदि आप सितंबर में इसकी रोपाई करना चाहते हैं तो इसकी नर्सरी जुलाई के अंत में तैयार करें। पौधे की बुआई अगस्त के अंत या सितंबर के पहले सप्ताह में करें। मई में इसकी रोपाई के लिए मार्च और अप्रैल माह में नर्सरी तैयार करें। पौधे की बुआई अप्रैल और मई माह में करें। टमाटर की पौध कैसे तैयार करें? खेत में रोपने से पहले टमाटर के पौध नर्सरी में तैयार किए जाते हैं। इसके लिए नर्सरी को 90 से 100 सेंटीमीटर चौड़ी और 10 से 15 सेंटीमीटर उठी हुई बनाना चाहिए।
इससे नर्सरी में पानी नहीं ठहरता है, वहीं निराई गुड़ाई भी अच्छी तरह से हो जाती है। बीज को नर्सरी में 4 सेंटीमीटर की गहराई से बोना चाहिए। टमाटर के बीजों की बुआई करने के बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए। बीज की नर्सरी में बुआई से पहले 2 ग्राम केंटान से उपचारित करना चाहिए। वहीं खेत में 8 से 10 ग्राम कार्बोफ्रान 3 जी प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से डालना चाहिए। टमाटर के पौधे जब 5 सप्ताह बाद 10 से 15 सेंटीमीटर के हो जाएं तब इन्हें खेत में बोना चाहिए। यदि आप 1 एकड़ में टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए टमाटर के 100 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी। टमाटर की फसल में ध्यान रखने वाली बातें। दोस्तों, टमाटर की फसल के लिए काली दोमट मिट्टी, रेतीली दोमट मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी में सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। वैसे टमाटर की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे उत्तम मानी जाती है। हल्की मिट्टी में भी टमाटर की खेती अच्छी होती है। इसकी अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी का पीएच मान 7 से 8.5 होना चाहिए, क्योंकि इसमें मध्यम अम्लीय और लवणीय मिट्टी को सहन करने की क्षमता होती है। विभिन्न कीटों और मृदा जनित रोगों से बचने के लिए बीज को 3 ग्राम थायरम या 3 ग्राम कार्बिजेंडा से उपचारित करें। यदि आपने टमाटर की फसल गर्मियों के दिनों में लगाई है तो 6 से 7 दिनों के अंतर पर सिंचाई करना चाहिए। यदि आप सर्दियों में टमाटर की फसल ले रहे हैं तो 10 से 15 दिन के अंतर में सिंचाई करना पर्याप्त है। टमाटर की अच्छी पैदावार के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करना जरूरी है। टमाटर की खेती का तरीका। खेत को 3 से 4 बार जोतकर अच्छी तरह से तैयार कर लें। पहली जुताई जुलाई माह में मिट्टी पलटने वाले हल अथवा देसी हल से करें। खेत की जुताई के बाद समतल करें। 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी गोबर की खाद को समान रूप से खेत में बिखेर कर पुनः अच्छी तरह जुताई करें और घास पात को पूर्ण रूप से हटा दें। इसके बाद टमाटर की पौध को 60 से 45 सेंटीमीटर की दूरी लेते हुए रोपाई करें। खाद एवं उर्वरक। उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर किया जाना चाहिए। किसी कारण से अगर मिट्टी का जांच संभव ना हो तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर नत्रजन 100 किलोग्राम, स्फुर 80 किलोग्राम, पोटाश 60 किलोग्राम की दर से डालना चाहिए। 1/3 नत्रजन, स्फुर और पोटाश की पूरी मात्रा का मिश्रण बनाकर प्रतिरोपण से पूर्व मिट्टी में बिखेर कर अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। शेष नत्रजन को बराबर भागों में बांटकर प्रतिरोपण के 25 से 30 और 45 से 50 दिन बाद ऊपरी बेसन के रूप में डालकर मिट्टी में मिला देनी चाहिए। जब फूल और फल आने शुरू हो जाएं, उस स्थिति में 0 से 4, 0 से 5% यूरिया के घोल का छिड़काव करना चाहिए, लेकिन सांद्रता पर काफी ध्यान देना चाहिए। अधिक सांद्र होने पर छिड़काव से फलों की पूरी बर्बादी होने की संभावना रहती है। वहीं हल्की संरचना वाली मृदाओं में फल फटने की संभावनाएं रहती हैं। प्रतिरोपण के समय 20 से 25 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टेयर की दर से डालकर मिट्टी में भली भांति मिला दें। फलों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 0 से 3% बोरेक्स का घोल फल आने पर 3 से 4 छिड़काव करना चाहिए। पाला व लू से टमाटर की फसल की सुरक्षा। टमाटर की पौध के प्रतिरोपण के तुरंत बाद सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद 15 से 20 दिनों के अंतराल में सिंचाई

की जा सकती है। टमाटर की फसल को जाड़े में पाला व गर्मियों में लू से बचाना बेहद जरूरी होता है। टमाटर की फसल को जाड़े में पाला तथा गर्मी में लू से बचाना केवल 10 से 12 दिनों के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए ताकि खेत में नमी बनी रहे। इससे जाड़े में पाला तथा गर्मी में लू का प्रकोप कम होगा, जिससे टमाटर की फसल को सुरक्षा मिलेगी और उत्पादन पर भी विपरीत असर नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों बात करें खरपतवार नियंत्रण की। कई खेतों में खरपतवार की समस्या अधिक रहती है। यदि आपके खेत में भी ऐसी समस्या है तो इसके नियंत्रण के लिए लासो 2 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से प्रतिरोपण से पूर्व डालना चाहिए। वहीं रोपण के 4 से 5 दिन बाद स्टाम्प 1.0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे उपज पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता है। सो देखो दोस्तों, जा अपन ने आज बात करी है टमाटर की उन्नत खेती की। सो दोस्तों अब एक क्रम में अपन और कह रही है कि माता दिन भैया बहुत देर से टमाटर के बारे में बात कर रहे हैं, मनोरंजन की तरफ कोनो ध्यान नहीं दे रहे। सो आओ दोस्तों मनोरंजन के लाने अपन सुनत ही बढ़िया से गीत खोल लेते हैं, गीत को आनंद। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। आओ दोस्तों सुन लेते हैं गीत को। जी गीत को गा रहे हैं रामकिशोर प्रजापति जी।

सुनो है गीत को, आनंदलाव है गीत को गा रहे थे रामकिशोर प्रजापति जी। अब दोस्तों रामकिशोर प्रजापति भैया जी के गीत के बाद हम आपको बता देंगे कि आज के कार्यक्रम खेत खलियान को इतना ही समापन होबे को समय होगा है। सो अपने दोस्त माता दिन भैया को दो कार्यक्रम से जावे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात है कार्यक्रम में, यही बेरा पे जब तक के लाने नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं ईवीरा अपने दोस्त माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली को। और दोस्तों, विधा बुंदेली कार्यक्रम में अपन एक गायक कलाकार से भी बात करते हैं और कछु विधा के अनुसार अपन गीतन को भी सुनते हैं। तो दोस्तों, ई में अपन आज पहला तो मिले भैया बाबूलाल कुशवाहा जी से और उनसे जाने के उनने गाबो बजाबो कैसे सीखो है, काका विधान जी गाउत हैं। और दोस्तों, यही के संगे संगे देखो अपने जो भारतीय परंपरा में नवदुर्गन को त्यौहार मानो जाते, वो त्यौहार भी अपनो आ रहा है, बिल्कुल नियर आगो है। तो दोस्तों, अपन को त्यौहार में भी गाउत बजाउत हैं, तो ऊ त्यौहार में जो देवी गीत अपन गाउत हैं वह देवी विधा को आउत है, तो ऊ देवी विधा के गीत भी अपन आज ही कार्यक्रम में सुने और भैया बाबूलाल से भी उनकी जुबानी को सुने। तो दोस्तों, आप ऐसी बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में और सुनत रहो जो कार्यक्रम विधा बुंदेली को। लेकिन दोस्तों, बाबूलाल जी से मिलवे से पहले अपन सुनत एक बढ़िया से गीत को और गीत को आनंद आप और लो और हम सो ले। तो दोस्तों, आओ सुनते हैं सबसे पहला तो एक गीत को और गीत को आनंद लेते हैं।

शकर कैलाश के ऊपर शिव शंकर तर पारी ब्रज तर धूनी रमाए बैठे आस

मथन से बादन निकली विषा भयंकर नारी, उसी विषा को घट घट पी गए गरग पेट में भारी, तुम्हारी हिम्मत को

भांग धतूर खावे अजब लगावे तारी। निरगुण सुरगुण निराकार में नाम तुम्हारो भारी। भगवान दास कहे।

0: बिल्कुल दोस्तों, मोरी नैया पार लगा दो भोले बाबा लहरी। देखो दोस्तों, कितना प्यारो गीत अपन सब जन ने सुनो है और गीत को आनंद लाओ है। और दोस्तों ये गीत को गा रहे थे भैया बाबूलाल कुशवाहा जी। तो साथियों, बाबूलाल कुशवाहा जी के गीत के बाद अब बाबूलाल जी से बात भी करते हैं कि भाई कैसे गावो बजावो इनने सीखो है और कैसे कैसे इनने काका गाओ है। तो दोस्तों बाबूलाल कुशवाहा जी से आओ अपन मिलते हैं ये छोटे से संदेश के बाद। अच्छा भैया, पहला तो आप अपना नाम बताओ।
1: बाबूलाल कुशवाहा।
0: बाबूलाल कुशवाहा कहाँ से हैं अपन?
1: बासवान
0: चताव से बाबूलाल जी। अच्छा बाबूलाल जी, आप जा बताओ कि आपने जो गावो कहाँ से सीखो? तो
1: हमने हमारे बूढ़े पुराने हैं थे
0: हाँ।
1: पहले के तो वो था पहले से
0: भजन जी होता थे आपके थे हाँ। अच्छा तो आपने उन्हीं से सीख लो जो
1: पहले बैठा था डाटा दूर दूर
0: हाँ दूर दूर
1: कई गुस्सा ना हो पाए नहीं
0: हाँ।
1: फिर उन्होंने कहा तो मैं सीखने हमने हाँ
0: सो
1: उन्होंने फिर बजवाओ घुवाओ।
0: अच्छा तो आपको जो पता है कि आप जब कितने साल की हुई हो जब आपने सीखो है? जो
1: हम 15-16 साल की।
0: 15-16 साल की तो आपको अच्छी ले हती मतलब गावे की
1: ले हती।
0: तो जैसे आपने 15-16 साल के हते हो और आप जैसे जो होते भजन वजन तो आप उनकी करके उनकी बैठन लगाते
1: हो
0: तो जो भजन का डेली होते क्या कम गहूँ होते ऐसे
1: पहले तो जैसे ब्याह माई करें आदमी अन्य
0: हाँ
1: बैठ गए सब रोई होते पहले तो।
0: अच्छा
1: अगर और रिश्तेदार आ गए तो कही आज आज होने होने हैं।
0: अच्छा
1: सुबह अच्छी ले लगी
0: हाँ फिर तो मैं ले बढ़त गई। फिर तो सबसे पहला का गाओ तो कछु ऐसी आप याद हो बे बादन की जब आपने सबसे पहला शुरुआत करी थी गावे की तो का चीज गाई?
1: हमने गाओ कछु नहीं
0: हाँ
1: वो तो जैसे आपने गाओ
0: हाँ हमने उठो संगे लो
1: आपने कह के हम तुमको बोलो
0: हाँ
1: ऐसे ऐसे

0: सीख गए।
1: अच्छा मतलब गावे वाले उठा दो फिर लगे आप तुम साइड में बोलो।
0: पहले छेड़ पसी को एक दूसरे से
1: हो
0: फिर उन्हें सके होकर जाप गाने तो नहीं आओ
1: हो
0: सुनने की सुनाओ।
1: हाँ
0: फिर ऐसे ऐसे गावे
1: गावे सीख गए
0: सब चाहे थे पार्टियों में चले जाओ।
1: अच्छा अच्छी बात है। देखो तो आपको कितनी जब लगन से हो सकता
0: है लगन से
1: है के? जब जिगर जी आदमी
0: हमें देख लगन है कि ब्याह है पे हम एक साल घर नहीं रहे।
1: अच्छा मतलब ब्याह आपको होगा तो
0: हाँ वो घर नहीं आए एक साल हम
1: एक साल आप घर नहीं आए तो कहाँ गए थे आप?
0: मैं जो सिखाओ तो उनके संग रहे।
1: अच्छा आपको घर से कोई मतलब नहीं ले बताओ। लेकिन अब आजकल की लड़का नहीं है ऐसे बेकच्चा हमें कोई शिकायत चाहना हमें कछु नहीं सीख रहा हमें तो घर
0: वो नहीं कहते रोटी खाई हमने।
1: अच्छा
0: वो तो ही रहे।
1: अच्छा को गाउ तो आप कहते जो ऐसे हते हमारे संग सीखते
0: चा से हते परिवार के।
1: हां
0: तेरा लाल कुशवाहा गुजर गए भी अब।
1: अच्छा
0: हां हां गुरु की हते
1: तो बे गाउ थाते सारंगी बजाउते
0: हो सारंगी
1: तो बे गाउते सारंगी बजाउते तुम तो फिर उन्हीं के संग लग गए
0: बस
1: घर से कोई मतलब नहीं। अच्छा शादी क्या साल की हते जब आपकी हो गई थी?
0: शादी हुई थी मेरी 18 साल में।
1: 18 साल में तो देखो आप जब लगन लगी तो लगन में आपने ना तो शादी देखी ना घर देखो ना कछु आप तो अपनो मंजिल खारी थी कि हमें जो काम करने वो करने
0: हमें सीखने सीखने का बजाव
1: है। तो देखो एक, एक लगन हो जी
0: अब यही तो अपनो साजबाज।
1: हाँ
0: आप बूढ़े पानों का रखे हैं अपने।
1: अच्छा तो इस साजबाज में काका हो काका है बजावे बाबू
0: सारंगी है खंजड़ी है जे झाने हैं।
1: अच्छा
0: झीका है
1: झीका है जे चीजें बजाते हैं आपकी। तो आप देखो भाई जो पुराने चलन के ये बाजे हैं जे अबे भी आप संभाल के रखे हैं अच्छी तरीके से।
0: अगर फूट जाए तो हम उन्हें मड़ भी नहीं
1: पाव पे मड़वा की जरूरत नहीं है और को मड़ पाते ना के नहीं जैसे के खुद ही मड़ नहीं आती जी तो
0: नहीं हम खुद ही सीखा उन्हें सब सिखा हमें।
1: अच्छा
0: हां गुरु जी ने
1: हां
0: गावो बजावो और बनावो सब
1: के अगर जब फूट जाए तो यही से मड़ लो
0: मड़ लो।
1: अच्छा काय से मड़ता करोगे फूट जाए तो
0: जैसे जे बकरा की खा ले बकत जा की।
1: हां
0: वो जाता जाना बढ़ जाए गोवा मिल जाए।
1: अच्छा
0: तो गोवा की बढ़िया बोला।
1: हाँ
0: वो की दाल बांट के।
1: अच्छा
0: वो उसे घेरे से लगा दो।
1: हाँ
0: कड़ाई बना के जो जो जागी रस्सी की।
1: हाँ
0: वो दो तीन आदमी टीरे को चढ़वा दो डांट के।
1: अच्छा
0: दूध ना चढ़ी अंदी
1: ले साहब तो इको फेविकॉल भी नहीं चाहे।
0: हाँ हाँ फेविकॉल तो फेरे वो दाग सामने।
1: अच्छा जयते के जाना काम करत। चलो भैया तो देखो आपने कितनी अच्छी बात अपने साथी में बताई। तो जब आपने कहो के सीखो जो सब काम तो जब से आप तो उन्हीं के संगे लगे रहे
0: हो लगाई जाए बिल्कुल तेरा भाई काम का घर करो।
1: हाँ।
0: रात में उन्हीं के संगे कर गए।
1: अच्छा घर से कोई मतलब नहीं रहो। चलो भैया जी तो देखो आपने कितनी अच्छी बात बताई। बस जी आदमी को जी की लगन लग जाए वो आदमी को काम करके होगा
0: रोकता ही है
1: ये
0: दागा हो।
1: हाँ
0: नन्ना गए लो अभी।
1: अच्छा किए लो अभी गए
0: घर
1: बहुत
0: हो। हाँ तो हाँ भज्जी बोले के काय तो ये बात तो जाना नहीं भजन में
1: जब घर आ गई
0: कहते कहते कहते तो ये नहीं जाने।
1: हाँ
0: हमने जाना तो है।
1: हाँ
0: बोले मां नहीं जाने।
1: हाँ
0: और अपने लगाओ सावन।
1: हाँ
0: और ना लो आए कि नहीं आप हमारे संग भाग गए
1: ले साहब
0: 3 दिन आ लौटे थी।
1: ओहो तो ये तो जब की बात है जब आप मुझे लगन लगी थी। लेकिन अब के लड़का भाई आजकल नहीं बेकत के हमें तो नन्ना को इंतजार है कब आ रहे हैं। चलो भैया बाबूलाल जी आपने इतनी अच्छी बातचीत करी अपने साथियों से ही खिलाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: हाँ देखो साथियों जी तो हते भैया बाबूलाल जी और बाबूलाल जी ने अपनी पूरी कहानी बता दी है कि हमने कैसे गावो बजावो सीखो है कितनी मुश्किल से सीख पाओ और काका गाउ थे। और दोस्तों एक के संग अगर आप और भी गाउ थे बजाउ थे और अपनी बात को हम तक रखवो चाह रहे रेडियो से बतावो चाह रहे तो आप हमसे जरूर संपर्क कर सकत। दोस्तों हमारा संपर्क नंबर है इस प्रकार से 0-75-25-84-81-11। साथियों जो नंबर लगा के आप हमसे सीधी बात कर सकत के माता दिन भैया हम जो कार्यक्रम गाउत हैं जो देते हैं और जा विधाकों भी गाउत हैं। तो दोस्तों एक विधाकों अपन उजागर कर भी के लाने और साथियों तक पहुँचा भी के लाने और आदमी ये सुन के सीख सकें ई के लाने आप हमसे जरूर संपर्क करें कि आप कैसे नजा आपने सीखी है और काका आप गाउत हैं। तो दोस्तों हमने आपको नंबर बताई दो और ई नंबर पे आप फोन लगा के हमसे सीधी बात कर सकत। और दोस्तों अब एक क्रम में अपन देखो कार्यक्रम को आगे बढ़ाउत भाई कार्यक्रम में सुना थे कछु गीतन को और गीतन को आनंद लेते हैं। सो दोस्तों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में।

देखो साथियों, जो कितना बढ़िया देवी गीत अपन सब जन ने सुनो है और ये देवी गीत को आनंद लाओ है। और दोस्तों ये गीत को गाए थे भैया भगवान दास पिपरिया वाले। तो साथियों भगवान दास जी के ही देवी गीत के बाद अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ तो है कार्यक्रम में और सुनते हैं एक और बढ़िया से गीत को और लेते हैं गीत को आनंद। तो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में। तो आओ दोस्तों सुनते हैं ये प्यारे से गीत को।

बिल्कुल साथियों, तुम बिन काज बने ना देव दर्शन मां विराज मोरे अंगना। देखो दोस्तों, कितना प्यारा जो देवी गीत अपन सब जनन ने सुनो है और ये देवी गीत को आनंद लाओ है। और दोस्तों आओ एक क्रम में फिर से सुनते हैं अपन एक और बढ़िया से देवी गीत को और वो गीत को आनंद लेते हैं। तो साथियों आप ऐसे सुनते रहो जो कार्यक्रम विधा बुंदेली को अपने दोस्त माता दिन के संग में।

बिल्कुल दोस्तों, सब पे कृपा राखियो हो माँ। देखो दोस्तों, कितना प्यारो जो देवी गीत अपन सब जनन ने सुनो है और ये गीत को आनंद लो है। और दोस्तों, ये गीत को गा रहे थे भैया हरी राम जी। तो साथियों, अब हरी राम जी के ही गीत के बाद हम आप सब जन को जो बता देवे कि आज के ही कार्यक्रम से आपके दोस्त माता दीन जी को जावे को समय हो गए है। तो अपने दोस्त को दे ई कार्यक्रम से जावे की अनुमति और अपनी तपनी फिर हुई है मुलाकात यही कार्यक्रम में यही बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।

0: सुनो आप तनके वो तार दियो गगरी लाला दे होने ग तुम्हारे के हम आई सुनो
1: के गगरी तोरी भौजी जबई उतर है गगरी तोरी भौजी जबई

बहुत ख्वाब जिकर लड़का बिटिया तुम्हें राम ने दई है हम सबको आनंद भइए ऐसे तो कह रहे के गगरी उतार दिखाए।

हमाओ के वो है, तुम कह रही के तू बेने है, हमें नेक में जोनो ही जाने मालूम का जाने क्या वो है। प्राणन से प्यारी भो जाई, ध्यान से सुनियो बात हमारी, ध्यान से सुनियो बात हमारी, कादे हो गगरी।

0: अब जा कह रहे जे जाने के जब बिटिया हम ये सब खुश रहे और दोनों कुलन की शान बढ़ावे जो ही है एकदम से नेगे में जाने और कछुरे जाने और
1: अरे खुशी रहे जानाज दुलारो कुल को है उजियारो
2: साथ रहे
1: अरे खुशी रहे जो राज

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप सुन रहे थे जी आज की सभा के प्यारे प्यारे से कार्यक्रम। तो दोस्तों आप सब जन को जी आज के कार्यक्रम कैसे लगे। अब दोस्तों आज की सभा इतनी संपन्न होत है, सो चलत चलत आपों ने लिख लो हमारे फोन नंबर को और पते को, जिसे आपों ने फोन नंबर पे और पते पे हमें कार्यक्रम के राय सुझाव भेज सकें। दोस्तों हमारा फोन नंबर है 92-19-20-77-49। सो ई नंबर पे आप फोन लगा के और हमें बता सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे। अब दोस्तों लिख लो हमारे पते को, हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगेला के पास ओरछा। सो आप और ई पते पे चिट्ठी पत्री लिख के भी भेज सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। अब आज की सभा को इतनी समापन होवे को समय हो गयो है। नमस्कार।
1: ये आवाज है बुंदेलखंड की।